नमस्कार, सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। आज दिन बुधवार, सक्संबत 1948, आषाढ़ महीने की 31वीं तिथि, अंग्रेजी सन 2026, जुलाई महीने की

22 तारीख है। इस वक्त स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कंट्रोल रूम से राजू चंदा के साथ मैं मोतीलाल आरंभ करते हैं आज की पहली सभा।

हम आकाशवाणी के हथलंग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनवाए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को

0: विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्लंग केंद्र है।

दोस्तों आइए जानकारी देते हैं आज के पहली सवा के मुख्य कार्यक्रमों की। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 का समय रहेगा महिलाओं से संबंधित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 7:00 हिंदी में समाचार लेके जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 पर आज का दिन। 7:30 का समय रहेगा युवा वाणी कार्यक्रम का।

सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:15 पर। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम 8:23 पर आप सुनेंगे पूर्वोत्तर समाचार आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। 8:40 का समय रहेगा कार्यक्रम सुरों की रंगोली का। इसमें आज आप सुनेंगे यशुदास के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने। सवेरे 9 बजे पुआर आंचलिक बातोरी रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

सवेरे 9:15 से रोजाना की तरह आरंभ करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम खेलमा। कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति गीत देंसोर दुम नई बम और उनके साथियों की आवाजों में। 9:25 पर रंगखोल कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भक्ति गीत ललसाई थोई रंगखोल और उनके साथियों की आवाजों में। इवर वांस्टिंग लकियंग और उनके साथी पेश करेंगे जयंतिया भक्ति गीत जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत 9:35 पर। 9:45 पर व्याते कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आधुनिक गीत छुआंग पुया दर ने और उनके साथियों के आवाज़ों में।

सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इसी बीच आप सुनेंगे 12 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2 बजे मिड डे न्यूज रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोस्तों, ये थी जानकारी आज के पहली सभा के मुख्य कार्यक्रमों की।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफ्तलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। इस गीत के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब आप सुनेंगे महिलाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं डर फिल्म के इस गीत के साथ। गायक कलाकार हैं उदित नारायण।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के गीतों के लिए। अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा
0: सुन रहे
3: कुमार।
0: थे हिंदी में समाचार रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तलंग केंद्र है।
3: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज कॉल्ड फॉर एक्सपैंडिंग इंडिया नॉर्थ मैसेडोनिया इकोनॉमिक टाइज, अर्जिंग बिजनेसेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू मूव बियॉन्ड ट्रेड एंड फोर्ज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Mulmu said a visit the first time by an Indian president to North Macedonia reflects India's strong commitment.

0: आज का दिन शुरुआत करते हैं पोएम ऑफ द डे के साथ।
1: भी बनती है ना क्लास के जी जो मैं पढ़ती हूँ। मैं आज एक पोएम बोलने जा रही हूँ, उसका नाम है स्टार लाइफ स्टार ब्राइट पास स्टार आई सी टुनाइट।

आज 22 जुलाई है। आज के दिन यानी 22 जुलाई के दिन बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी, बहुत से महान लोगों ने जन्म लिए, साथ ही बहुत से महान लोग इस दुनिया से चले गए। और ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जिसने इतिहास में अपनी जगह बनाई। आइए जानते हैं भारतीय एवं विश्व इतिहास में 22 जुलाई को घटित हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में।

स्पेन ने सन 1731 को वियना संधि पर हस्ताक्षर किए। जॉर्ज वाशिंगटन ने सन 1775 में अमेरिकी सेना की कमान संभाली। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय सन 1918 में लंदन के आसपास जर्मनी के विमानों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई सन 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने सन 1981 में कार्य करना प्रारंभ किया। अमेरिका के 500 वैज्ञानिकों ने सन 1988 में रक्षा मंत्रालय पेंटागन में जैविक हथियार बनाने के लिए शोध का बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा ली। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना सन 1999 को लागू हुई। शेर बहादुर देउबा सन 2001 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। समूह 8 देशों का जिनेवा में सम्मेलन संपन्न हुआ। 29वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 22 जुलाई सन 2009 का सूर्य ग्रहण था। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल माइकोलॉजी के फफुंदी अनुसंधान दल ने सन 2011 में 100 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकने वाले तापरोधी फफुंदी के बीजाणुओं की खोज की थी। प्रणब मुखर्जी सन 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे।

अब बातें करते हैं आज के दिन जन्म में कुछ महत्वपूर्ण लोगों की। पहले लोकसभा के सदस्य सदा सरदार तेजा सिंह अक्करपुरी का जन्म 22 जुलाई सन 1894 को हुआ था। प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म आज ही के दिन सन 1923 को हुआ था। संगीतकार डोनल ह्यू डॉन हेनली का जन्म सन 1947 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अनंत कुमार का जन्म सन 1959 में आज के दिन हुआ था। रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे का जन्म सन 1965 को हुआ था। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म सन 1970 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक विनायक राव पटवर्धन का जन्म 22 जुलाई सन 1998 को हुआ था। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और केट मिडिलटन के पहले पुत्र प्रिंस जॉर्ज का जन्म सन 2013 को आज के दिन हुआ था।

वैसे ही आज के दिन कुछ मशहूर लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आइए जानते हैं उनके विषय में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का निधन 22 जुलाई सन 1933 को हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्त कर्ता मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का निधन सन 1968 को आज के दिन हुआ था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज का दिन। इसी क्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं कुछ सुमधुर गीत।

अभी आप सुन रहे थे आज का दिन, साथ ही सुनवाई जा रहे थे कुछ सुमधुर गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रण केंद्र है।

0: आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुत कर रही हैं अंकिता पॉल।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा युवा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते बुधवार सुबह 7:30 पर। श्रोताओं, इस वक्त पूरी दुनिया में फुटबॉल का जुनून देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े मैचेस और शानदार परफॉर्मेंसेस के बीच हमें याद आता है कि हर सफल प्लेयर के पीछे एक कोच की मेहनत, गाइडेंस और डेडिकेशन भी होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक फुटबॉल कोच, मिस्टर बांगथाइडाओ लांगथसा, जो ना सिर्फ प्लेयर्स को गेम की ट्रेनिंग देते हैं बल्कि डिसिप्लिन, टीम वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं। तो चलिए उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, एक्सपीरियंसेस और यूथ के लिए उनके विचारों के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
0: जी, तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: मेरा नाम बांगथाइडाओ लांगथसा है। तो बेसिकली मैं डिग्री हाफलोंग से हूँ।
0: जी,
1: मेरा बचपन फुटबॉल और स्पोर्ट्स में ही गुजरा है।
0: जी,
1: और मैंने क्रिकेट भी बहुत खेला है और मेरा रुचि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इस फील्ड में आके अभी कोचिंग में भी मैं अभी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। और जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना एक्सपीरियंस से थ्रू मेरा जितना यूथ है लड़के लोग को मेरा नॉलेज पास ऑन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है?
1: मेरी पढ़ाई सारा यहाँ पे डॉन बॉस्को हाई स्कूल हाफलोंग से फ्रॉम 1 till 10th।
0: जी,
1: एंड देन ग्रेजुएशन आई एंड मास्टर्स ऑल इन गुवाहाटी।
0: जी जी, चलिए मैं अभी जानती हूँ कि आपका जो ये फुटबॉल के साथ जो आपकी जर्नी है वो कैसे शुरू हुई है।
1: सी, मैं ऐसा फैमिली से आता हूँ जहाँ पे एक स्पोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रिंगिंग अप था, बिकॉज माई फादर एंड बोथ माई पेरेंट्स, एक्चुअली माई मॉम ऑल्सो, दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट इन दोज टाइम्स। फुटबॉल में मेरा रुचि धीरे धीरे बढ़ा क्योंकि उस टाइम जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे एक्चुअली क्रिकेट इतने लोग खेलते नहीं थे।
0: जी जी,
1: सो ऑल माई फ्रेंड्स, माई सीनियर्स यूज टू प्ले फुटबॉल, सो नेचुरली आई वेंट ऑन टू प्लेइंग फुटबॉल एंड दैट इज हाउ आई फेल इन लव विद द गेम।
0: जी, तो ये आपकी एक जर्नी कह सकते हैं जहाँ पे आप नेचुरली चले गए।
1: यस यस।
0: तो आप जरा मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि फुटबॉल से आपका जो रिश्ता है वो ऐसे ही चला गया, नेचुरली जो है वो बनता चला गया है, अगर फुटबॉल आपकी लाइफ में नहीं आता तो आज आप खुद को किस फील्ड में देखते हैं?
1: अगर फुटबॉल मेरी लाइफ में नहीं होता तो इट इज़ वेरी इजी, आई वुड हैव लव टू बी ए क्रिकेटर, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी कहा मेरे घर में एक स्पोर्ट्स का माहौल था, स्पेशली क्रिकेट एट दैट टाइम। आई रिमेम्बर राहुल द्रविड, सचिन तेंदुलकर, ऑल दोस ग्रेट प्लेयर्स वी यूज टू वॉच विद आवर फैमिली। माई फादर समटाइम्स यूज टू बी वेरी एंग्री व्हेन इंडिया यूज टू लूज, बट दोस आर द मेमोरीज आई हैव विद क्रिकेट एंड सो आई थिंक क्रिकेट इज व्हाट आई वुड हैव डन इफ आई नॉट फुटबॉल। या
0: जी जी, आप जरा हमें ये बताइए कि जैसे आप क्रिकेट बैकग्राउंड फैमिली से आप बिलोंग करते हैं लेकिन अभी आप एक फुटबॉल कोच है, ये भी एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। फिर भी मैं आपसे एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट जानना चाहूंगी कि जो आपको आज भी याद आता हो।
1: ओके, आई रिमेम्बर

0: रेनी डे, इट वॉज इन अगस्त आई थिंक इन 2013 और 12, या हम लोग शाम के टाइम में ट्रेनिंग कर रहे थे,
1: जी
0: फुटबॉल ट्रेनिंग. एंड देन आई ब्रोक माई लेग, आई मीन आई डिसलोकेटेड माई एंकल.
1: ओ
0: एंड देन दैट इंजुरी, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर. एंड आई ऑल्सो मिस वेरी इंपॉर्टेंट फुटबॉल ट्रायल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड बिकॉज आई कुड नॉट रिकवर इन टाइम. एंड देन
1: जी
0: आई मिस्ड अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज, द गुड क्लब्स वेर कॉलिंग, बट देन बिकॉज ऑफ माई इंजुरी आई कुड नॉट अटेंड दोस.
1: जी जी
0: या
1: तो ये भी बहुत याद रहेगा आपको कि इसके वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिली है और बहुत सारे चांसेस भी आपके हाथ से गए हैं।
0: Yes, this is a part of sport. You know, sometimes you're going to get injured. Yes, you have to take it like head up. You know,
1: जी
0: like
1: ये भी एक चैलेंज है।
0: yeah.
1: तो जैसे हमें पता है कि आप एक कोच है, कोच बनना और प्लेयर बनना दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील होता है आपको?
0: Because before being a coach, I was a player. No,
1: जी बिल्कुल।
0: so as a player, you think more individually. You have to improve yourself. Example, if you're running slow, you have to make yourself faster. You're training to become faster, example. But as a coach, I have to carry the whole squad together.
1: बिल्कुल।
0: I cannot think about an individual player. I have to think about every player in the group. I have to make them work together.
1: जी
0: Some players, they play good when they are aggressive. Some players, they become better when they stay cool and calm. So I cannot treat every player equally.
1: जी जी
0: That is when the management comes, man management comes into play. So I think becoming a coach is more inclusive. Yeah, you have to take a look into every matter. So if a player, example, he's feeling down, he's unmotivated, you know, I have to go and talk to him.
1: बिल्कुल।
0: Yeah, I have to go and know what is wrong with him. I have to encourage them. And apart from football, there's so many things that are going around in the player's head.
1: जी
0: I have to try to understand those things and obviously trying to make them play better together.
1: जी
0: Yeah.
1: जी बिल्कुल। एक कोच बनना भी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी
0: Yes,
1: है।
0: absolutely.
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा है कि हर किसी को आपको लेके चलना पड़ता है एक कोच हिसाब से, जब आप नए बच्चों को ट्रेन करते हैं तो सबसे पहले स्किल देखते हैं या उनका एटीट्यूड?
0: Yes, this is a very good question. Talent and skill, there's a difference between talent and skill. Some people are born with talent, you have to accept it.
1: जी
0: Some
1: जी
0: people are naturally talented. And skill, but you can develop by
1: यस
0: training, by your diet and everything coming to regular training. But attitude is something that you have to come from within. So, person with a good attitude, a player with a good attitude, will always overcome a player who is more talented.
1: जी
0: So, if a player, he might not be as good as the other player now. But if he has the right attitude, the talented guy will always come behind because the skilled player is more motivated.
1: जी जी
0: So he will always pass him. So I always think, and this is my belief, in fact, that more than a talent and skill, I think attitude is one of the most important in sport and also in life, I think.
1: जी जी जी तो जैसे हमारे आजकल के जो यूथ है, यंगस्टर्स है, उनमें बहुत टैलेंट होते हैं लेकिन पेशेंस थोड़ा कम होता है। पेशेंस थोड़ा कम हो गया है पहले से। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं?
0: देखिए, आजकल आजकल हमारे स्पेशली इन दिस एरिया हाफलोंग यंग किड्स, यंग बॉयज, फुटबॉल एंड एनी रिगार्डिंग एनी अदर स्पोर्ट, दे लैक लॉट ऑफ पेशेंस.
1: जी जी
0: दे वांट क्विक रिजल्ट्स.
1: बिल्कुल।
0: एंड इन स्पोर्ट क्विक रिजल्ट्स डज नॉट हैपन. इट इज लाइक प्लांटिंग अ स्मॉल प्लांट. वी हैव टू वाटर इट, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सनलाइट एंड एवरीथिंग. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो प्रोसेस. You know, development doesn't happen in a month, in a two. It happens, it takes years, just like how a plant grows and turns into a tree. So I think the boy should not lose patience.
1: जी
0: You know,
1: जी
0: even if not in sport, also in any other part of life, I think patience is more important.
1: जी ये बहुत सच बात है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ में शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है।
0: एब्सोल्युटली.
1: जी आपने जैसे कहा है कि पेशेंस लूज़ नहीं करना है हमारे सभी यंगस्टर्स, नॉट ओनली यंगस्टर्स, हर किसी के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हो गया है सोशल मीडिया का टाइम है, तो इस ज़माने में आपके हिसाब से यंग प्लेयर्स के लिए मोटिवेशन ज़्यादा है या डिस्ट्रैक्शन, ये जो सोशल मीडिया?
0: दिस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल.
1: जी जी
0: आजकल सोशल मीडिया में इतना सारा कॉन्टेंट है, फ्रॉम गुड टू बैड. यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स,
1: जी
0: नेगेटिव पॉजिटिव. इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल.
1: बिल्कुल।
0: सो इफ ए प्लेयर वॉन्ट्स टू लर्न न्यू स्किल, देर सो मेनी कॉन्टेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक इफ द इंडिविजुअल मैनेजेस टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे, it is to his advantage. And if he wants to use it otherwise, then it is actually a disadvantage. It is up to the individual, I would like to say. Yeah.
1: जी जी yeah. जी आपकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लग रही है हमें. मैं आपसे आपके बारे में एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब आप इस फुटबॉल फील्ड में प्रोफेशनली उतरे उसके बाद आपने खुद में क्या चेंजेस देखा है?
0: For me, it is about discipline. When you go with and train with good players, you get to learn from them and from good coaches. आप बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं. Say for example, many players, all of them come from humble background, maximum.
1: जी.
0: So everybody have seen hardships, struggles, and they have come up.
1: So
0: when you go in that environment, obviously you become more motivated.
1: जी जी.
0: Yeah, you learn so many things apart from football also. So it's more about discipline and having a good lifestyle.
1: जी.
0: Yeah, I think that is. I would like to say that.
1: जी तो आपने कहा है आपके बारे में बहुत अच्छा लगा. और आपने हमें पहले एक बात कही थी कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मोस्टली स्पोर्ट्स रिलेटेड है. तो अभी का जो हमारा मोस्टली फैमिलीज होता है ना, हर कोई अपने यंगस्टर्स के जो पेरेंट्स है वो स्पोर्ट्स को कैरियर के रूप में सपोर्ट नहीं करते हैं. हाँ, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
0: इट इज एक्चुअली वेरी सैड दैट पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग द किड्स to play any sport. Football, cricket, badminton, any sport, you know. If your kid wants to play football, cricket or any sport, it is actually a blessing in this today's generation.
1: जी जी.
0: Because in this generation, जैसे कि आपने कहा, social media का जमाना है, people are stuck to their phone, late nights, they want to go out, hang out. तो अगर आपका बच्चा sports में involved रहता है, he is not just playing football, he is challenging himself every day physically.
1: Yeah,
0: he is learning new skills, he is meeting new people, he is developing social skills. And of course, if you go and play, आपका mentality, आपका resilience बढ़ता है.
1: जी जी.
0: आप example के लिए आप ground का दौर लगा रहे हो. After 5 rounds, you are tired. अगर आप ground में regular आते रहोगे, तो आपका mental resilience बढ़ेगा. That you have to push through when you are tired. And all those things will eventually make your kid much stronger than other kids who are not into sports.
1: बिल्कुल.
0: So just like I want to talk about myself.
1: जी.
0: My father used to drop me off at training. When I was a kid, my father used to bring boots for me, socks for me. So I come from that kind of family where mere family ne kabhi khelne ko mana kiya hi nahi. In fact, my father and my mother want me to play. So I'm very lucky in that respect. So I want other parents also not to stop the kids from playing. Yeah, I would like to say that.
1: जी जी. बहुत अच्छा लगा ये. आशा करती हूँ हमारे जितने भी listeners में parents जुड़े होंगे सभी को ये मदद करेगी आपका जो एडवाइस है. तो चलिए अभी हम थोड़ा बात करते हैं. अभी जैसे हमें पता है फुटबॉल का सीजन चल रहा है बहुत, और आप एक फुटबॉल कोच है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस सीजन में जो ऐसी कौन सी टीम या प्लेयर है जिसने आपको पर्सनली इम्प्रेस किया है?
0: तो अभी फिलहाल तो वर्ल्ड कप चल रहा है.
1: जी.
0: इस बार वर्ल्ड कप का फॉर्मेट थोड़ा लंबा है, टीम ज्यादा है. द स्मॉल स्मॉल नेशंस लाइक केप वर्डे, नॉर्वे, उन जैसे कंट्री ने काफी अच्छा किया है. जैसे कि ट्रेडिशनल पावर हाउस लाइक इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, वो तो हमेशा ही अच्छा करते ही आ रही हैं पहले से भी. बट व्हेन यू सी लाइक स्मॉल कंट्रीज कमिंग एंड डूइंग वेल इन मेजर टूर्नामेंट्स लाइक वर्ल्ड कप, आई समटाइम्स फील लाइक व्हाई इज इंडिया नॉट देयर. या एंड वन प्लेयर इफ आई हैव टू टॉक इज अर्लिंग हालैंड. ही इज अ स्ट्राइकर फ्रॉम नॉर्वे.
1: जी जी.
0: ही इज वेरी यंग नाउ एंड स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स in the world right now.
1: जी, मतलब तो उन्होंने आपको पर्सनली इम्प्रेस किया है. जी, तो हमने फुटबॉल सीजन के बारे में बात किया है और आपने कहा है कि आप प्लेयर का नाम आपने कहा है, उन्होंने आपको बहुत ही पर्सनली इम्प्रेस किया है. जी, तो अभी आप जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, आप ऐसी कौन सी लेसन से जो देना चाहेंगे बच्चों को जिससे उनको बहुत हेल्प हो, वो भी फ्यूचर में एक ऐसी पर्सनैलिटी बने?
0: फुटबॉल इज लाइक क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज, विदाउट वॉल्स. अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आपको जिंदगी में भी काम करेगा.
1: जी.
0: नॉट जस्ट इन द ग्राउंड. फॉर एग्जांपल, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको डिसिप्लिन में आना है. यू हैव टू कम क्लीन, यू हैव टू वॉश योर जर्सीज. एग्जांपल, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट दिस थिंग्स मैटर्स. या एग्जांपल के लिए आपको, इफ आई कॉल द प्लेयर्स एट 6:30, द बॉयज हैव टू गेट रेडी एट 5:30, दे हैव टू हैव द ब्रेकफास्ट एंड देन कम टू ट्रेनिंग. ऑल ऑफ दिस थिंग्स, coming to ground, being humble, talking to everybody, social skills, all these things. Apart from football, football is not just about your skill, it's not about just tactics, it's more mental.
1: Gee.
0: Yeah, it's more mental. If you win in your mind, then I think the ground, it becomes very easy.
1: जी जी बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन करना पसंद करेंगे कि बच्चों में ये सब क्वालिटीज़ आए। आप हमें ज़रा ये बताइए कि एक अलग सा मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपका जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसा रहता है आपका?
0: आई ट्रेन द बॉयज अर्ली इन द मॉर्निंग
1: जी
0: 6:30। अभी समर वेकेशन है तो ऑल द बॉयज इन द एकेडमी आर हैविंग ऑफ सो दे डोंट हैव टू गो टू स्कूल। सो अर्ली मॉर्निंग वी ट्रेन फॉर लाइक 3 hours। Sometimes we even go to the gym. We have a gym. And on other days, when there is no holiday, we train on Saturday and Sunday, on weekends.
1: जी जी तो आपका ये शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग का, और जब आपका इस काम से आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पे आप क्या करना पसंद करते हैं?
0: Personally, I really like going to the gym. Even though people might think in your free time you should go and have a coffee, maybe hang out with your friends, but I like to go to the gym. I really like to go to the gym because I like to sweat out. I've been working out for a while now, maybe close to 9 years, 10 years. I really love the gym. I just don't like hanging out much.
1: जी जी बहुत अच्छा है, ये भी खुद के लिए एक प्यार है।
0: एब्सोल्युटली
1: जी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके, और आखिर में अभी हमारे कार्यक्रम के अंत में हम पहुंचने वाले हैं, आपसे आखिर में ये चाहूंगी कि आप हमारे यूथ लिसनर्स के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने की हिम्मत दे।
0: टू द यंग लिसनर्स, रूल नंबर 1 इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे तो आपका आधा काम वहीं पे हो जाएगा। इफ यू थिंक यू कैन डू इट then you can do it. But if you think you cannot do it, you cannot do it. So it's up to you. Keep following your passion. और सबसे important है, एक routine बनाइए, एक routine को consistently long time तक follow कीजिए। एक महीने दो महीने से नहीं होगा, you have to follow it for quite a long time, like 8 months, 9 months. कोई भी चीज़ में अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फिटनेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू स्टे लॉक्ड इन फॉर अ लॉन्ग पीरियड सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स, यू आर रेडी टू ग्रैब इट। एंड ऑल्सो वी हैव टू स्टे हम्बल। दिस इज माई मैसेज।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी जो सारी बातें हैं आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो पे आए, हमसे इतनी सारी बातचीत की, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: यस थैंक यू, आई एम ऑल्सो वेरी प्रिविलेज्ड एंड हैप्पी टू बी हियर।
1: जी श्रोताओं, तो आज हमारे अतिथि ने अपने जर्नी, एक्सपीरियंसेस और बहुत ही प्रेरणादायक बातें हमारे साथ साझा किए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे फुटबॉल में हर मैच एक नई सीख देकर जाता है, वैसे ही आज की ये बातचीत भी हमारे यूथ लिसनर्स को अपने सपनों के लिए मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अब दीजिए मुझे यानी अंकिता को इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए युवा और नए विषय के साथ। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी हाफलोंग के साथ, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को तैयार किया था अंकिता पॉल ने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। अब आपको कुछ फिल्मी गाने सुनवाए जा रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हपलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है समाचार प्रभात, रिले किए जा रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ा संचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की।

0: मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
4: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
6: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
7: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
6: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफ्तांग केंद्र है।

0: बेटी की फिक्र न कपड़े का काम और न घूंघट का झगड़ा और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
1: वो देश आपका भी तो है।
0: काली मत दो
1: जी।
0: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं।
1: मेरा तो है।
0: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
1: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
0: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो जीरो एंड जीरो।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर समाचार, लिखे गए थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों की रंगोली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे यशुदास के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों की रंगोली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाए जा रहे थे येसुदास के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफ्तलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है पुआरांचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

सुन रहे थे पुआर आंचलिक पाटोरी, रिले किए गए थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति गीत लेकर आ रहे हैं तेनसुम दोन नेइबोम और उनके साथी।

आप सुन रहे थे डैन सुमटन नए बम और उनके साथियों की आवाज़ों में खेलमा भक्ति गीत फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं रांगखोल कार्यक्रम। रांगखोल कार्यक्रम के अंतर्गत आज आनंद लीजिए भक्ति गीतों का, लाल साई थोई रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रांखोल कार्यक्रम के अंतर्गत लालसाई थोई रांखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में रांखोल भक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हपलंग केंद्र है। जारी है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम, आइए सुनते हैं जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति गीत। इवर बांस्टिंग लकियंग और उनके साथियों की आवाज़ों में

अभी आप सुन रहे थे जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत इवर वांस्टिंग द किंग और उनके साथियों की आवाज़ों में जयंती भक्ति गीत। अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं व्याते कार्यक्रम छुआन पुलिया दर ने और साथ ही पेश करेंगे व्याते आधुनिक गीत।

जॉन पुयातार ने और उनके साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे व्याते कार्यक्रम के तहत व्याते आधुनिक गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है आज का स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। आपको सुनवाए जा रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। अब मैं मोतीलाल आपसे ले रहा हूँ इजाज़त। आपके साथ आगे रहेंगी मेलेडी आमो।

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया,
1: जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई,
0: कभी थपकी दी और बहलाया,

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहां लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि इसे हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत।

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है। मेरे देश में पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी, उसका
1: पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वहीं हुआ था ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो संग्रहित
1: मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी मेंशन की हुई है।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में हैं, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी।
1: हाँ, वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
0: खराब माना जाता।
1: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
0: अरे गजब।
1: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे, सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
0: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
1: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको
0: जी जी।
1: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उस पर एक्टिंग भी करते थे।
0: वाह वाह।
1: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
0: जी,
1: तो उनको भी पकड़ा जाता था, डायलॉग मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
0: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
1: हाँ, फिल्में देखते तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है,
0: समुद्र के पार है,
1: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
0: हाँ।
1: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
0: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
1: तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज दे वर अ मार्शल क्लैन।
0: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
1: कैडेट, यू वाज़ अ नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई, दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
0: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
1: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो मिटुनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
0: ये जो बगावत थी नेवी
1: बगावत
0: की, ये बहुत मशहूर है,
1: बहुत मशहूर है,
0: इसका
1: बहुत।
0: इतिहास में दर्ज है।
1: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पे राज नहीं कर सकेंगे
0: जी।
1: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके कू बन जाता है, लेकिन भी कू
0: बिल्कुल,
1: तो दैट इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा
0: जी।
1: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।

0: गए तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं।
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल
0: मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैड टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक
1: जी
0: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है।
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
1: जी
0: मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया सबसे
0: छोड़ दिया।
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर
1: अब जब
0: फॉर।
1: घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली एकदम, फिर तो इमिजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे, छोटा मोटा काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब इनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे, कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी
0: बाकी
1: दो
0: दूसरों का
1: बंदे
0: कुछ था, उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और उस जिसे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के, सब पैसे वैसे जेब में जो भी 5, 10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे
0: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के लिए
1: हुई।
0: सब जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे
0: तो
1: अरे
0: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि इसको यहां से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया गांव में,
1: यहां गलत संगत हो
0: गलत
1: गई।
0: संगत होगी इसकी, और
1: हाँ
0: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में
1: स्ट्रिक्ट लोग हैं
0: डिसिप्लिन,
1: वहां पर।
0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, करें। ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तब किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतना बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध का, दूध और
0: दूध का शौक, मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी

0: पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्शी साहब ने देखा यार ये तो खूब पिटाई हो रही है, लेकिन यार धूप भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी ना किसी के पीछे छुप जाते थे
1: ताकि रिंग में ना आना
0: पड़े। हाँ, वो रेंज में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए। लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइंड न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
1: अभी तक मेरे हाथ से
0: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से, और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है। और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो,
1: हाँ,
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहाँ से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन गहने वहने, हाँ, खाना जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर 2-3 फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी। पता नहीं कब बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डू नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे,
1: क्योंकि
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाऊजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले, अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए,
0: वो तस्वीर ही उनकी मेमोरी थी, कि ये उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है, उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात।
0: तो मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ, वो कोई नहीं लिख सकता।

0: ब्रेक लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, लड़के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है, ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती ना,
1: यस बिल्कुल,
0: हाँ हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है,
1: क्या
0: हमसे
1: बात
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा उनके जाने के बाद, जब मैंने उनका वॉलेट खोला मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस मिली।
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि, ये कितनी बड़ी बात है।
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी की कहानी है।

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जो रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहाँ इंडस्ट्री भी थी, तो वहाँ भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुनः शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
0: सरकार ने भेजा?
1: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र शूट नहीं किया। दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही हैं, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पुनः से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिए गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके,
1: तो उनका जो कोड नेम था सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइपराइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई

0: सोते अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी इज रिकॉर्डिंग
1: आवर, तो वो नहीं जान पाए,
0: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
1: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है,
0: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
0: वाकई में आजाद थे वो,
1: क्या बात,
0: आजाद दिल के।
1: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
0: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
1: हाँ,
0: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
1: ट्रेनिंग वहां हुई,
0: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब
1: जी,
0: में,
1: जी जी,
0: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो हाँ, आपका गांव है।
1: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर, आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो
0: हाँ,
1: अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा
0: लेकिन
1: लगता
0: कमाल
1: है कि
0: वो एक... ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
1: तो वो टच नहीं करते थे,
0: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
1: नहीं, लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट,
0: सब कुछ, लेकिन
1: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
0: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
1: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
0: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। तो बोलता अभी अब जाना है, खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिती-गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे हैं, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूँ साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
1: तो एक अकेलापन आ जाता
0: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
1: जी जी,
0: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
1: यस,
0: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ,
1: कि मेरा तो कोई नहीं है,
0: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
1: हाँ,
0: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो आपको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की,
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज्ड दैट शी डाइड बिकॉज़ शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ, जब सेकंड

0: पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी,
0: लेडीज
1: बिल्कुल
0: की,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं है, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों था?
0: हाँ, दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, कि उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था, 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, इसे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया, जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां 1-2 घंटा गाना लिखा, 2-3 जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको रिपीट किया।
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो
1: अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा। तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में
1: माय
0: जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया, क्योंकि अभी उसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो, क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट बैंड्रा स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन
1: ट्रेन
0: यार।
1: से जा रहे थे। क्या बात है,
0: हाँ, एक
1: क्या बात
0: जर्नलिस्ट
1: है।
0: मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला, रहे हम बख्शीश आपको देखते थे यार,
1: ट्रेन में जाते
0: हाँ
1: हुए।
0: क्यों जाते थे, तो बोले कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत
0: तो
1: ही कमाल की कहानी। चलते हैं,
0: हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा,
1: ये बहुत
0: तो वो
1: बारीक बात
0: स्पिरिचुअल
1: है
0: ताकत वापस
1: जी,
0: आएगी।
1: बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बम्बई जा यार, तू बम्बई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बम्बई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम करें, बिकॉज दैट इज, व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, मैंने ज्वाइन द नेवी, इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया, कैसे, उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पर चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सेलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर। वो है हमारे
1: गजब
0: पास
1: गजब।
0: चिट्ठी।
1: यानी एक
0: हाँ,
1: फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको
0: सिनेमा में काम दो।
1: वाह वाह
0: वो है मेरे
1: वाह।
0: पास चिट्ठी, है हमारे पास, मेरे पास रेडीनेस को संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने
1: हाँ
0: मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: हाँ इंडस्ट्री वालों को थोड़ी
0: इंडस्ट्री को
1: पता
0: क्या
1: है इस
0: कीमत
1: बात
0: है कैप्टन की।
1: जी। आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वाज
1: क्या
0: द मेन
1: बात है।
0: स्टार ऑफ बराखाना शोज,
1: और ये
0: एनुअल इवेंट्स।
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के
0: हाँ,
1: उनकी धुन पर
0: उन्होंने,
1: गाने लिखना शुरू कर दिया था
0: हाँ जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी,
1: जी।
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, ट्वेंटी
1: अरे
0: एट ट्वेंटी नाइन
1: बाप,
0: टाइम्स क्यों देखा था, ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे,
1: ये उनका रियाज था।
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रिकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहली बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रिटाइज हुआ, कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे,
0: छोड़ी
1: बंबई आए,
0: 1950 में,
1: साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स, बम्बई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: बंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए, तीन महीने में वापस चले गए और वापस आर्मी में
0: हार के। और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपति हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई,
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है? वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का। तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है? तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ। तो तू इधर क्या कर? मेरी बहन की शादी है। तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज, वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था, नंद।
1: हाँ, आनंद से नंद।
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत है।
0: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं, कुछ देखने होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप? देखने
1: सीधे शादी तय।
0: शादी तय, और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए, ये कमाल की बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: वी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई, और अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
6: आज के मेहमान
1: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है सुनिधि सी, इस एल्बम का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, गीत और संगीत ललित का।

हेमा सरदेसाई की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवाते हैं, समीर के बोल, जवाहर वत्तल का संगीत और एल्बम का नाम सजना।

मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आइए सुनते हैं। शब्दकार इब्राहिम अश्क, संगीत भूपिंदर सिंह का, और एल्बम कुछ इंतज़ार है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष

अगली जो आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पामेला जैन की आवाज में मनोज दर्पण का लिखा हुआ ये गाना, बबली का संगीत, एल्बम मेरा घूंघटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था।

0: था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समय हो गया है फिर से विविध भारती के कार्यक्रमों को आनंद लेने का। चलिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: व्यास के बोल एस एन त्रिपाठी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: साथ रखकर वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर करने वाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।

हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। तीसरा कौन इस फिल्म का गाना बोल है आनंद बख्शी के, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: लीजिए अब सुनिए शोर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना सावन फिल्म से है, प्रेम धवन के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ युगल गाने। पूनम की रात इस फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, सलील चौधरी का संगीत।

आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना राज फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि जब मुश्किल हालात हो तब मेरे पास आना और मेरे पास वो सुकून मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आवाज़ आपके पास है तो उसे हमें बताइए। मनोज कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी की ये बात है कि निराशा के इन घने बादलों के बीच जब जिंदगी से भरोसा उठने लगता है तब रेडियो के किसी कोने से एक बेहद दर्द भरी रूहानी और मखमली आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ हमारे टूटते हौसले को संभालती है और गुजरे ज़माने की भूली हुई यादों को ताज़ा कर देती है। भले ही ये दुनिया बड़ी है संग दिल, लेकिन उस आवाज़ का जादू हर गम को सहने की ताकत देता है। वो दर्द के बादशाह और जज्बातों के जादूगर कोई और नहीं, हमारे अजीज मुकेश जी हैं, जिनकी आवाज़ ने हर तन्हा दिल को जीने का सहारा दिया है। एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत के कण कण में मुकेश जी समाए हुए नजर आ रहे हैं। दर्द भरे करुण रस से परिपूर्ण गीतों के साथ मुकेश जी के कुछ और भी गीत हमें सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, गीत कई सारे हैं। और इसके पहले जो कार्यक्रम था यादों की महफिल, उस कार्यक्रम में हमने आपको लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत सुनवाए, बहुत सारे जिनमें बहुत हंसते खेलते गीत थे। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत हैं जो हमारे दर्द से जुड़े हुए हैं या हमारे दिल के या हमारे समय के बहुत मुश्किल हालातों से जुड़े हुए जो गीत हैं वो आपको सुनाई देंगे। चलिए अगला गाना, विश्वास फिल्म का गाना, मुकेश जी की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, जितेंद्र और अपर्णा सेन पर फिल्माया गया

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि बचपन में माता पिता, बाद में वाइफ, और सूरत में जब 2006 में पूर आया था यानी कि बाढ़ जब आई थी, तब मेरे अंकल यानी कि मेरे जो काका हैं उन्होंने मुझे कहा था मैं हूँ ना। एक साथी की ये बात है कि आज जो इबारत है इंसान के भीतर छिपे उस असीम धैर्य और जज्बे को सलाम करती है जो सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखता है। ये रूहानी और जादुई आवाज़ सदी के महान गायक मुकेश जी की है, जिनके गाए गीत जाऊं कहां बताए दिल की गूंज, इस इबारत के हर लफ्ज़ को महसूस होती है। जब रिश्तों के धागे टूट जाते हैं और अपने ही पराए होने लगते हैं, तब मुकेश जी की आवाज़ किसी ठंडी छांव की तरह हमारा हाथ थाम लेती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि केवल सुर नहीं लगाते थे, बल्कि इंसान के एकाकीपन और उसके भीतर चल रहे संघर्ष को अपनी आवाज में जी लेते थे। उनका वो सादगी भरा, दर्द से भीगा अंदाज भरोसा दिलाता है कि बिखर जाना अंत नहीं है, ठोकरे खाकर फिर से खड़े होना जिंदगी का असली नाम है। बहुत अच्छी बात है आपकी, धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, देखिए कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अपने आप को संभाले रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं? क्या कहते हैं आप अपने दिल को, अपने मन को किस तरह समझाते हैं? और ये भी हमने आपसे पूछा है कि कौन सी आवाज़ें हैं, कौन सी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे कहा है कि हाँ मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल हैं, दो सवाल हैं, बताइए इसके बारे में। चलिए अगला गाना संगम फिल्म से है, शंकर जयकिशन का संगीत है और इसमें तीन कलाकार हमें दिखाई देते हैं, तो राज कपूर तो हैं ही, उनके अलावा दो और कलाकार हैं, वो कौन कलाकार हैं ये आप हमें बताइए।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हमारे कि जब मैंने कक्षा 10वीं परीक्षा दी थी, लास्ट पेपर के दिन पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा निरंतर विविध भारती सुना करते थे और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना करते थे। आज लगभग 30 वर्ष हो गए मैं भी निरंतर रूप से विविध भारती सुनता हूँ, और जब कभी परेशानी में होता हूँ तब विविध भारती में एक हिम्मत दिलाने वाला गाना बज जाता है और कहीं से ये सुनाई देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे पास मुकेश जी के गाए गीतों की किताब हुआ करती थी जिसमें से हमने सारे गीत याद कर लिए थे, तो उनके तो सारे गीत ही हमारे फेवरेट हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, पैसे का महत्व धन की महिमा बखान करता है, ये गीत बता रहा है कि प्रेम में भी पैसे ने सेंध मारी की है, पैसे के खातिर लोग कैसे दिल तोड़ देते हैं और अलग दुनिया बसा लेते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी के गाने की बात है तो दिल की गहराइयों में समा जाता है वो जो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुकेश जी का व्यक्तित्व उनके गायन की तरह ही अत्यंत सरल, विनम्र और सहज था। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे, उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे सहकर्मियों, संगीतकारों और अपने प्रशंसकों के प्रति आत्मीय व्यवहार रखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनके व्यक्तित्व को और अधिक महान बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देवर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका ही आपको बताना है।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही ख़त्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज़्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी ज़िंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज़ का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूँ। दर्द में डूबी वो आवाज़ जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा, इस फिल्म का गाना, इंदेवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मैं कभी मुकेश जी के गाने पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब गाने सुने तो पता चला कि इन लोगों को या इन गानों को लेजेंड क्यों कहते हैं। इन लोगों के गाए गाने सीधे दिल की गहराई में उतरते हैं। और एक गाना जो हमने देवर फिल्म का सुनवाया था, बहारों ने मेरा चमन लूट के, तो एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि वाह क्या बोल है, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती का नाम क्यों दे दिया, अप्रतिम गाना है। और इसी गाने के बारे में हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि देवर फिल्म की ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, ये इंसानी रिश्तों की मजबूरी, किस्मत के क्रूर खेल और निस्वार्थ प्रेम के बदले मिले धोखे को दर्शाता है। ये गाना सिखाता है कि जब इंसान के पास अपनी बेबसी जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो संगीत का सहारा लेता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुकेश जी 1972 में हमारे शहर कटक में आए थे, बाराबाती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, नितिन मुकेश छोटे थे वो भी आए थे और गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं ये गाना उन्होंने गाया था और ये बातें इन्हें याद आ रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज़ यानी सादगी, सच्चाई और दर्द का ऐसा संगम जो सीधे रूह को छू जाए। उन्हें विरह के गीतों का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के भी उनकी गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं छोटी बहन फिल्म का गाना। मुकेश की आवाज़ है, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन से कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

रहमान पर फिल्म आया गया ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि मुकेश की गायकी कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं था, उनके हर गीत में शब्दों का उच्चारण इतना साफ और संजीदा होता था कि हर शेर एक कविता की तरह कानों में रस घोलता था। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एकदम अंदर तक धंसे हुए हैं दिल में ये सारे गाने। हम लोग के घर में लॉन्ग प्लेयर था रिकॉर्ड, मुकेश जी का हर तरह के गाने का कलेक्शन हुआ था होता था, बहुत अच्छे लगते हैं उनके ये गाने। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि राज कपूर के रूप में मुकेश को सिनेमा का बेहतरीन साथी मिला, आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी जैसे गीतों में उन्होंने आम आदमी, उसके संघर्ष और उसकी जिंदा दिली को अपनी गायकी से एक मुकम्मल अंदाजे बयां दिया। राज कपूर ने शायद इसीलिए कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किसने लिखा है ये गाना, ये आप हमें बताइए।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आपने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी की राह में कभी ठोकरें मिलती है, कभी बहारें, कभी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी वक्त वफा करना भूल जाता है। ऐसे में कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। वे हमारे दर्द को शब्द देती है, हमारी यादों को सहलाती है और अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाती है। ऐसी ही ये आवाज़ें। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर जी एक ऐसी आवाज़ का नाम है जो सीधे दिल में उतर जाती है। द वॉइस ऑफ द मिलेनियम और द मैन विद द गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी की आवाज़ में जो दर्द, सादगी और एक अनूठी कसक थी, मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज का ठहराव और उर्दू की बेहतरीन अदायगी थी। मुकेश जी अपने गीतों में जीवन के दर्शन, प्यार की तड़प और आशावादी दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोया था। चलिए, संजोग फिल्म का गाना, संगीत किसका है यह आपको बताना है। दो कलाकार हैं, प्रदीप कुमार और शुभा खोटे, उन पर फिल्माया गया यह गाना है।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो केवल एक गीत नहीं गाते थे बल्कि सुनने वाले के दिल का बोझ हल्का कर देते थे। जब वे गाते हैं चांदनी आई घर जलाने, तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें भी उस वक्त इंसान को तकलीफ दे रही है। ये आवाज़ हर अकेले और उदास इंसान को ये तसल्ली देती है कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको आपको मिल ना सके सुबह के उजालों में। कुछ आवाज़ ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है वो आवाज़ मुकेश की। एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज़ थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झड़ती वो आवाज़ हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज़ हमें अपने साथ झूला झुलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज़, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं, नदी में जितना पानी है, वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज़ का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्म आया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन, संघर्ष और संगीत के रूहानी असर का एक अत्यंत भावुक और जीवंत चित्रण है। ये सच है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर ठोकर के बाद संभलना ही जीवन है। जब इंसान तन्हाई, छल और वक्त की बेवफाई से टूट जाता है, तब शब्द और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त केवल संगीत और एक रूहानी आवाज ही दिल को तसल्ली दे पाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बंदिनी फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, नूतन पर फिल्माया गया। संगीत किसका है आपको बताना है।

दिल को सीधे लगती है मुकेश जी की आवाज़, बिल्कुल सीधी सादी सादगी सच्चाई भरी आवाज़। कौन भला न होगा जो मुकेश जी की आवाज़ पर मोहित ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान की असली पहचान उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौती भरे समय उसके जीवन का हिस्सा होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियों में भी असली पहचान व्यक्ति के धैर्य और संयम से होती है। इसमें सफलता मिले या असफलता उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। समय कम है, चलिए एक गाना आपको सुनवाते हैं। बंबई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है ये आपको बताना है।

अब हमें भी चलना होगा, समय जो है हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि कुछ और बातें की जाए या और गाने सुनवाए जाए। ये जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव आनंद और सुचित्रा सेन हैं, और आपने बहुत प्यारी बातें फेसबुक पर लिख करके भेजी, इसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल

0: जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं।

0: ते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

0: एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
1: In this era of volatility and disruption,
2: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: इवन वाल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
3: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समय हो गया है फिर से आपको विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनवाने का, तो चलिए सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

तू नहीं और सही इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में, गीतकार असद भोपाली, संगीतकार रवि।

परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीबी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार, इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं, आशा भोसले की आवाज़, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं रंगीला राजा फिल्म का गाना, तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल, संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

क्या जुर्म किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बिल्कुल बढ़िया।
2: बिल्कुल मॉनसून में
1: बारिश का आनंद ले रही हो, है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां, तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मानसून चलेगा।
2: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मानसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
1: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती। तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है, महिलाएं और फिटनेस, ये हमारा पहला विषय है। और दूसरा
2: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर। हाँ। और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए।
1: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
2: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है या फिर आप अपने अच्छे तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
1: तो ये आप हमें बता सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए आज फिटनेस की बहुत सारी बात हो रही है, तो ज्वार के व्यंजन, अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह, एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, तो आप जहां पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं।
2: क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं?
1: हाँ, तो रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी दादी नानी के जमाने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और वो है संगीत। चलिए सुनते हैं एक गीत।

0: आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज़ें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और ख़ास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीज़न हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो चलो फिटनेस के ऊपर हम और कुछ बताने वाले
0: हैं। हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका हैं, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करिए, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं, आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
3: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही है लगातार?
3: जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
3: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो समय सखा भी सुनते हैं, तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ आकर।
2: जी, हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
3: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है।
2: बिल्कुल,
3: और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है, और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा,
2: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
3: नहीं, अमूमन नहीं होता।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहां से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये कि, तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
2: जी,
3: और मुझे इससे अब बचना है। यहाँ तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी
2: जी,
3: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ,
2: बैडमिंटन खिलाड़ी
3: रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है
2: जी।
3: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो, लेकिन आप नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, पांच किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं
2: जी।
3: और तब मैंने एक कहानी लिखी फतेह, इसी थीम को लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, यानी महिलाएं अगर 30 वर्ष से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए
2: जी।
3: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया
2: बिल्कुल,
3: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ चना चवला तो महिलाएं अपने किचन में है, रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपने डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए
2: जी।
3: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचोरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
2: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
3: ये मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार, तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहाँ हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहाँ, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए
2: जी जी,
3: है ना, फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूँ आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
2: बिल्कुल, और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है,
3: होती है,
2: क्योंकि वो नियमित रूप से
3: गर्दन की होती है,
2: गर्दन की होती है।
3: तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं
2: जी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
3: देखिए, जमाना बदला है, है ना, इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है
2: जी।
3: एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ, और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नज़रिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
2: बिल्कुल,
3: मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें
2: जी,
3: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता
2: जी। और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका। विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो आरती, देखो हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई।
1: जी
2: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
1: बिल्कुल, ये
2: कुछ
1: भी
2: राज
1: फिटनेस में ही आता है।
2: तो ये उन्होंने हमें
1: जी
2: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा,
1: बिल्कुल।
2: ना?
1: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
2: हाँ,
1: उसमें।
2: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
1: बिल्कुल।
2: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
1: जी
2: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो
1: बिल्कुल,
2: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
1: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
2: हाँ,
1: जाएगी।
2: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
1: जी
2: घर की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती
1: जी
2: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है, और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीज़ें ले सकते हैं। और ये

0: जो जंक फूड होते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें होती हैं, उनको अपना लें तो ज्यादा बेहतर है।
1: हाँ, डिब्बाबंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज बनाकर खाएं।
0: क्योंकि हम छोटी सी भी चीज जो जंक फूड वाला लेते हैं ना, उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है।
1: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
0: बिल्कुल। और जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है या रोजनवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की, तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रखें, फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है। इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना
0: बिल्कुल। अगर आप जिम नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं। तो आप घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना, तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
1: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी हैं जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू, मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग और मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी हैं वो ये भी लिख रही हैं कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमज़ोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियाँ मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती।

0: संगीत बहुत तरोताजा रखता है, इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है, पिलेट्स कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है, ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग, हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है, ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफ़ी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
0: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
1: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियाँ बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियाँ बनती है, और जब कोई त्यौहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिज़ाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिज़ाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिज़ाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
0: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीज़ों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियाँ सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफ़ी चलन में है।
1: बिल्कुल। और ये साड़ियाँ मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
0: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
1: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं, वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों,
0: जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है त्योहार है।
1: बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है, तो वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षेत्रीय धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक, विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं।
0: जी, और फिर है मोइरांग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखेई फी, ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखेई क्षेत्र में बुना जाता था।
1: और जी, सामी लामी फी, ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों और पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है।
0: जी, और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है, एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
1: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहाँ से एक साड़ी ज़रूर मंगवाइएगा, उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आइए। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज़्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आँखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब यह होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है। हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मितव्यता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्यता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है, तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है। और फिलहाल एक गीत सुनना है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है। अच्छा। महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है किनारों से, इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज़्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके और थोड़ा दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसी रेसिपी बता दी आपने।
0: बिल्कुल पारंपरिक जो रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद जो है वो निकल जाता था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस दे तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल। अब और भी व्यंजन।
1: हाँ जी बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है इन्होंने लिखकर भेजा है ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर रहती है। ज्वार

0: आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेकें, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना लें इसका।
1: अच्छा।
0: वो तैयार कर लें और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके। अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल लें, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुनें और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन भी उसमें आप ले सकते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का। तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबलस्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंथ सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा, फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए। लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए। तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए। फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए। फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ लें, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरें और बाटी की तरह इसको सेक लें या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल लें और यह स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल लें और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगाएं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी, जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 मुट्ठी कटा हुआ ताज़ा धनिया, 3 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब 1 बाउल में ज्वार, जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको। फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं, आलू का मसाला, या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज़ से किस तरह की चीज़ें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज़ अच्छी बन जाए, वो चीज़ अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
1: बना के देखिए।
0: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल, इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल, स्वस्थ रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम समय हो गया है हिंदी में समाचार का। तो चलिए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि चर्चा यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए और जितनी लंबी चाहे चल सकती है।
3: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के प्रत्येक मुद्दे को सुनने और उसका समाधान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों और युवाओं का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना अड्डे पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित संबंधों के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में शुक्रवार तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा। Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day.
0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समय हो गया है फिर से आपको विविध भारती के कार्यक्रम सुनवाने का। चलिए सुनते हैं।
5: वीडियोस आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट मैं हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
6: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर
5: नहीं
6: है।
5: जी, जी।
6: मुख्तार भाई आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
7: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
6: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है?
7: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा
6: जी।
7: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफ़र शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में।
6: हाँ हाँ।
7: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
6: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
7: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते ना
6: जी, जी।
7: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है।
6: हाँ।
7: आज भी मतलब मेरा एनरोलमेंट है
6: जी।
7: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।
6: हाँ, हाँ।
7: तो ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
6: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं।
7: हाँ।
6: क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं
7: जी, जी।
6: पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आप को कम गाने का मौका मिला।
7: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद।
6: क्या बात, क्या बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है
7: जी, जी। तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है।
6: वाह वाह वाह।
7: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका।
6: एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर।
7: वाह, क्या बात है। वो भी डांसिंग का म्यूजिक है।
6: ये डांसिंग का म्यूजिक।
7: तो दो लाइनें हो
6: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त तो हम स्पीचलेस हो जाते,
0: बिल्कुल
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल गोविंद, आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आँख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज़ इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया हो।

0: इतने सरल स्वभाव के आदमी,
1: बिल्कुल
0: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना, और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं।
1: अच्छा मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
2: जिन

क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं।

0: को होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है, ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार,
0: जी
1: इसलिए जो सैड सॉन्ग्स हैं उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से
2: यही
1: जोड़कर
2: यही
1: देखा जाता है, गोविंद आप ये मानते
2: यही
1: हैं?
2: इंटरव्यू बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। तो यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
0: लेकिन
1: अच्छा।
0: लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
1: क्या
0: तो
1: बात
0: मतलब
1: है,
0: 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को
1: वाह।
0: ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर गाइए।
2: अच्छा।

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना, वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा भी मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा, तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है ऐसा।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली, मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप
1: जो

0: पसंद वही बात कहेंगे।
1: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना, सफर फिल्म से। और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
2: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए उनके गाने।
1: वाह वाह,
2: जैसे फिल्म कभी कभी का।
1: हाँ,

0: हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते हैं।
1: क्या बात है,
0: ये कि देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
1: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती हैं?
2: सैड नंबर की ज्यादा आती हैं।
1: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
1: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
1: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा।
1: तीसरी कसम,
0: तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। एक गले के लिए खास सबसे पहला वही ज़रूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तब ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब

0: टेस्ट ऐसा करता हूँ, चलो इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
1: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है
2: थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है।
1: अच्छा ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है, तो किन गजलों का?
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
1: जी।
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है तेरे

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑनियर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: और क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना?
1: हो

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: क्या बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना, कि
1: मैंने भी, अच्छा मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ़ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहाँ हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु।
2: मैं वो सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
0: ओ
1: गजलों
0: यस
1: का, जब
0: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
0: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए,
1: हाँ
0: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा सा, अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है, जैसे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगता, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और मैं
1: अच्छा
0: कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, पर आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ
1: अच्छा,
0: नहीं।
1: इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा, भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना
0: नहीं,
1: आज,
0: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर
0: आप
1: वाले पे छोड़ दो।
0: ऊपर वाले को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई
1: हाँ
0: संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते,
0: जी
1: अमूमन आपको सब गाने याद हैं।
0: जी
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
0: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
1: बिल्कुल।
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं, तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है वो।
1: चलता चला जाता है।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए
0: जी
1: मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा
0: हाँ
1: कर रखा
0: और
1: है।
0: वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज़ इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी, एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है, तो वो नज़र वहाँ जाएगी, वो कहते हैं ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है। तो खरीदना ही नहीं चाहिए
1: सच में। गोविंद,
0: बैंडेज।
1: कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
0: हाँ कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज़, कुछ लाइनों को देखना पड़ता है, मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है, लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद हैं, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, 2-3 बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है,
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: इतने
0: फिर
1: सालों
0: भी
1: से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफ़ी सारे मतलब रिहर्सल में स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में, लेकिन ये हाँ कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ करें, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पर, और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा फिगर देखना पड़ा।
1: गोविंद आप बताइए।
2: नहीं रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो सब इतना मेहनती हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
0: जी,
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
0: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा

0: दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था, तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था उस जगह पर। तो
1: इतनी
0: ये जो
1: बारीकी से
0: इतनी
1: वो
0: बारीकी से जो सुनना,
1: जी। और
0: ये
1: प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम
0: हाँ
1: गलत बजा रहे थे।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली
1: तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो।
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहाँ आप नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
0: तारों में सच के
1: वो गाना सुनते हैं आपसे।
0: ता

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया, हाँ। तो मैं वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, किराया हुआ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफ़ी सारे फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर्स ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती
1: है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था ऐसा बस।
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं, शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या हाँ। वो वहाँ होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होके गाए हैं,
0: तो हाँ।
1: लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: अच्छा,
1: मैंने काफी शोज इनके साथ किए तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे, जितना अच्छा। आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे,

क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है जी।

0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ आज की पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:20 हो चुके हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरी सभा के साथ, यानी शाम को 6:00। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे, नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6 बज चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं रीनी स्वागत करती हूँ आज की दूसरी सभा में।

सभा शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की इस दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही समय में यानी कि 6:05 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत आप सुन पाएंगे सबसे पहले कुछ मार भक्ति गीत ओबेद लाल सिंह मार और उनके साथियों की आवाज़ में। कितलेलू ले क्वामे और उनके साथियों के गाए जेमी आधुनिक गीत पेश करेंगे शाम के 6:25 पर। 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिली किए जाएंगे संध्या आंचलिक बातुरी।

शाम 7 बजे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए स्थानीय भाषाओं सुनवाएंगे डिमासा आधुनिक गीत प्रदीप फोंगलो और उनके साथियों की आवाज़ में। गायक कलाकार बोबिता इंगतिपी और उनके साथी पेश करेंगे कारवी भक्ति गीत शाम 7:20 पर।

7:40 पर आप आनंद ले पाएंगे। कुकी पारंपरिक गीत पेश करेंगे एथेंग सिंगसॉन और उनके साथी। सुरु की रंगोली आप सुन पाएंगे रात 8:00।

8:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार 8:45 पर।

नेपाली गीत आप सुन पाएंगे रात 9 बजे, और श्रोताओं आज की आखिरी पेशकश रहेगी चित्रगीत कार्यक्रम रात 9 बजे 9:30 पर।

श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, बढ़ते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की ओर। सुनते हैं मार भक्ति गीत लाल सिंह मार और उनके साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लालसे मार और उनके साथियों की आवाज़ में मार भक्ति गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है मार कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आरंभ करते हैं जैमिया धुनी गीत। पेश करेंगे किदले लूले कुआ में और उनके साथी।

इसी आधुनिक गीत के साथ ही जैमी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। आइए अब आप सुनने जा रहे हैं संध्या रांचलिक बादुरी, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे डिमासा आधुनिक गीत प्रदीप वोंगलो और उनके साथियों की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आनंद लेते हैं कार्बी पारंपरिक गीत का, बोबिता इंगतपी और उनके साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्बी पारंपरिक गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है कार्बी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब चलिए आरंभ करते हैं कुकी कार्यक्रम। सुनते हैं एथेंग सिंगसोन और उनके साथियों की आवाज में कुछ कुकी पारंपरिक गीत।

0: 归来两盏灯，
1: 归来归来两盏灯，
0: 龙潭街边我林。

0: Rồi mày mày tôi có lẽ nè.
1: Rồi mày mày tôi có lẽ
0: Nem bôi chẳng nói.

श्रोताओं, इसी पारंपरिक गीत के साथ ही कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम भी। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आइए आनंद लेते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम का, यशुदास के सुपरहिट गाने का।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुरों की रंगोली के तहत मशहूर गायक यशुदास के सदाबहार गाने। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आइए सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
6: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
7: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
2: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: नामची जिले के NSPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NSPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
9: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains.
0: श्रोताओं, आपने सुने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए समाचार संध्या।
11: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए अब आनंद लेते हैं कुछ ट्रेडिशनल नेपाली गीतों का।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का ट्रेडिशनल नेपाली गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है और अब पेश है आज का आखिरी चित्र गीत कार्यक्रम। श्रोता, आज के इस चित्र गीत कार्यक्रम में मैं आपसे जिस विषय में बातें करूंगी वो है एक मुस्कान की कीमत। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमारे ज़िंदगी को अपनी मौजूदगी से खूबसूरत बना देते हैं। कुछ लोग बिना शोर मचाए अपनी फ़िक्र, अपने प्यार, अपने हौसले और छोटे छोटे एहसासों से हमारी ज़िंदगी में इतनी रोशनी भर देते हैं कि उनकी अहमियत शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। उनके हर सच्चे प्रयास और हर मुस्कान के पीछे छुपा अपनापन हमें हर रोज़ ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत दौलत किसी का साथ और उसका दिल से निभाया हुआ रिश्ता होता है। और दिल से बस इतनी सी दुआ निकलती है कि जिसने अपनी मोहब्बत और अपनी खुशियों से, कोशिशों से किसी और की ज़िंदगी को इतना हसीन बनाया हो, उसकी ज़िंदगी भी हमेशा खुशियों, सुकून और मुस्कुराहटों से भरी रहे। ऐसे लोग वाकई हर खुशी के हकदार होते हैं। तो आइए इस खूबसूरत एहसास के साथ बढ़ते हैं आज के चित्रगीत की तरफ, जहाँ हर गीत उन अनमोल रिश्तों को सलाम करता है जो ज़िंदगी को और भी हसीन बना देते हैं।

हर रिश्ता अपने साथ भरोसा, अपनापन और अनमोल यादें लेकर आता है। इन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कभी बड़े वादों की ज़रूरत नहीं होती। एक प्यारी सी मुस्कान, एक सच्ची बात और एक दूसरे को समझना, समझने की कोशिश ही काफ़ी होती है। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि माफ़ी, समझदारी और एक दूसरे की इज्जत हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। हर बात जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी किसी अपने को संभालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं कि सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहाँ ईगो से ज़्यादा अहमियत अपनेपन को दी जाती है, जहाँ गुस्सा कुछ पल का होता है लेकिन दुआएं हमेशा साथ चलती रहती है। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी आपकी मुस्कान की वजह बनकर आपका साथ दिया हो, तो बिना किसी खास वजह के उनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए। हो सकता है वो शब्दों का इंतज़ार नहीं कर रहा हो, बस एक छोटे से एहसास का इंतज़ार कर रहा हो। रिश्ते जीतने के लिए हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ सच्चा अपनापन होना ही काफ़ी होता है। और जो लोग दिल के करीब होते हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ऐसा साथ नसीब नहीं होता। अंत में मैं दो पंक्ति के साथ मेरे लफ्ज़ों को विराम देना चाहूँगी। खामोशियों में भी कभी अपनापन बोल जाता है, खामोशियों में भी कभी अपनापन बोल जाता है। जो दिल से जुड़ा हो वो हर फासला तोड़ जाता है, वो हर फासला तोड़ जाता है।

ये था दिल को छू लेने वाला गीत। उम्मीद है कि इस गीत का हर लफ्ज़ ने आपके दिल में एक प्यारी सी मुस्कान ज़रूर छोड़ दी होगी। और अब इसी खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनिए एक और बेहतरीन नगमा।

कभी कभी किसी की खैरियत जान लेना ही मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। हर रिश्ता हमेशा लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता, कुछ दुआओं, यादों और खामोश एहसासों में भी जिंदा रहते हैं। उम्मीद है इस गीत ने आपके दिल के किसी कोने को ज़रूर छू लिया होगा। और अब इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए सुनिए और एक प्यारा सा गीत।

ये था दिल की गहराइयों को छू लेने वाला गीत। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो ना शोर मचाते हैं, ना ही अपनी मौजूदगी का दावा करते हैं, फिर भी वो दिल के सबसे करीब बस जाते हैं और हाँ, खामोशी को एक नया मतलब दे देते हैं। शायद सच्ची मोहब्बत की खूबसूरती भी इसी में है, वो महसूस ज़्यादा नहीं होती, बया कम है। अब और खूबसूरत मोड़ देते हैं इस कार्यक्रम को। पेश है अगला गीत।

दोस्तों, ये था दिल को सुकून देने वाला गीत। ज़िंदगी का हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, कुछ सफ़र हमें अपने एहसासों से मिलवा देते हैं और कुछ किसी खास इंसान के अहमियत का एहसास करा जाते हैं। दुआ है कि आपकी ज़िंदगी का हर सफ़र मोहब्बत, उम्मीद और खुशियों से रोशन रहे।

श्रोताओं, इसे गीत के साथ ही आज का चित्रगीत कार्यक्रम में ही पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बजने ही वाले हैं। कल सुबह पहली सभा के साथ हम फिर से आपसे हाजिर होंगे आपके समक्ष। इसी के साथ ही मैं रिनी लेती हूँ आपसे इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।